ब्रह्म सुब्रह्मण्यम सन्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम शिव शिव शिव सुब्रह्मण्यम हर हर हर हर सुब्रह्मण्यम ओम शिव शिव शिव शिव सुब्रह्मण्यम हर हर हर हर सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शंकरवन भव सुब्रह्मण्यम शंकरवन भव सुब्रह्मण्यम जय शिव शरवण भव सुब्रह्मण्य गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्य ओम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्य गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्य शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्य हर हर शिव शिव शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्य।

0: are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Maru solhe mahalla panjama ek ovankar sadgur prasad kare anand anandi mera kadkad purna sir sirai nibera sir saha kai sacha sahib avar nahi ko duja he harkhvant anant dayala प्रगट रहे हो प्रभ सर ब्योजाला रूप करे कर वेखै विकसै आपे ही आप पूजा है आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावै दिन राती आपे सुन सुन पीजा है साचा तख्त सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वर्ती जाहे सचत पावस सच्चे केरा साचा थान सदा प्रभ तेरा सच्ची कुदरत सच्ची बाणी सच साहेब सुख की जाहे एको आप तू है वड राजा हुक्म सच्चे के पूरे काजा अंतर बाहर सब के जाने आपे ही आप तीजा है तू वड़ रसिया तू वड़ भोगी तू निर्वाण तू है ही जोगी सर्व सुख सहज कर तेरा अम्यो तेरी दृष्टि जाहे तेरी दात तुझे ते होवे देह दान सब सह जंत लोवे टूट ना आवे पूर भंडार है तृप्त रहे आगी जाहे जाचै सिद्ध साधक बनवासी जाचै जति सती सुखवासी एक दा तार सगल है जाचक देह दान सृष्टि जाहे करे भगत हर रंग अपारा खिन मैं थापो थपनहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुक्म मन भक्ति जाहे जिस देह दर्स सोई तुद जाने ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने चतर स्वरूप सियाणा सोई जो मन तेरे पावी जाहे जिस चीत आवै सो वे प्रवाह जिस चीत आवै सो साचा सहा जिस चीत आवै तिस पाओ केहा अवर कहा किसकी जाहे तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूर लै तूटा गंडा सुरत शब्द हृदय अंतर जागी अम्या चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीव अमर भया अवनाशी थीवे ना को आवे ना को जावे गुर दूर किया परमी जाहे पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे महे समाणी चढ़े सवाया नित नित रंगा कटे नाही तोली जाहे बारहा कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ मनीष चढ़ाया परख खजाना पाया सराफी फिर नाई ताई जाहे अमृत नाम तुम्हारा स्वामी नानक दास सदा कुर्बानी संत संग महा सुख पाया दे

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साहि सवारे, सास ग्रास माले करता कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरियै, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुण जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणै कौ रखै न कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाढ़ अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारै कछुए नाही, जिस जणाए तिसै जणावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलैही कीने, ताकी कीमत कहन न जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बधै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंधकूपते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद।

अष्टपदी संत का दुखन आप जा कटा, संत का दुखन जमते नहीं छुटा, संत का दुखन सो सब जाए, संत का दुखन नरक में पाए, संत का दुखन मत तो मलिन, संत का दुखन सो बातेहीन, संत के अत्य को रखे ना कोय, संत का दुखन तान पष्ट होए, संत कृपा कृपा।

जलमत वड भागी तेजन रघुमाए सदा साहर के गुण गाए राम नाम जो करे बिचार से तनवंत करे संसार मंत्र में बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इतुत।